हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलाए तृप्तास, है मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस, नाम न पाया उनते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिक जीव वास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तौर मस्तक लिखिया लखास, धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, रागुजरी महला पंजवा, पाहे रे मन चित वै उद्यम, जा आहर हर जीओ परया, सैल पत्थर मैं है जंत पाए, ता करजिक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले, सो तरिया गुरप्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उडे वैसा कोसा, तस्पाछाए बचरे छरिया, तिन कमन खलावै कमन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा सो पुरख, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावै है सब त्यावै है तुद जी, हर सच्चे सिर जन हारा, सब जीत माडे जी तू जिया का दाता, रा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घड़ घड़ अंतर सरमरण अंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चो जिवडाना,

तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवा है तुझी जा नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुझी से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका पहु सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सालाहन तुरजी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तपहज पह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो पावे है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरखे अपरंपर करता जी तुझे बड़े अवरण कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुझे आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे कर है सो होई। तुझे आपे सिरठ सब पाई जी तुझे आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब साई का जानोई। आसा महला चौथा। तुम करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हम पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया। जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियावो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जिए जंत सब तेरा खेलो विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेलो। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने। हर गुण सदी आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवरण कोए तू कर वेख जाने सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवर डाय भई लिन वासा पाणी पावक तनह किया। पंक जो मोह पग नहीं चल हम देखा तह डूबियले। मन एक न चित समूढ़ मनाओ हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हूं जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया। प्रणवत नानक तिनकी सरणाओ जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मनुख देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अबर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरन जाम लाग पावजल तरण कै जन ब्रिथा जात रंग माया कै नहाओ। जप तप संजम

शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चाओ पई पुन राक्षस का काटा सीसा। श्री असकेत जगत के ईसा। पोह पन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन्यान वधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुस्तन दाह गरीबन वाजा। अखल भवन के सृजनहारे दास जान मिले उबारे। कबे उबाच बेनती चाओ पई अमरी करो हादर रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतपारा अमरे दुष्ट सबै तुम काबहो। आप हादय मोहि बचाबहो सुखी बसाई मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर्ण दई करे। सब बैरण कौ आज संघरे। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा। तुम्ह छाड़ कोई अवरण त्याऊ। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है। चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे अबरे। मरण काल का त्रास नरे। ओ जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोह राखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा। काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिस्न प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहि हमारा। जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा। सोई गुरु समझे हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को फल मोहबत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चीटी थे कुंचर या स्थूला। सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना। कट कट के पट पट की जाना। जबद कर करा करतारा। प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या कर करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जिते बदन श्रेष्ठ सब तारै। आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही तेरा तन डालम। जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ। आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारद भेदा। जाको भेव न पावद बेदा। ताको कर पाहन अनमानत। महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध हजीती। बरणत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसाड़ा। केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा। रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी। उत भुज खान बाहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हां बैठा। कहूं सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम्भव। आदि जुगाद स्वरूप सजम्भव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बर सिख संघरो, दुट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणि परे, तिनके दुष्ट दुख तो हव मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरहंत काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुड़ छा छब सकै न कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल पास ते ताहूं बारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दर्द दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हादय लेहो बारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छाई करता, श्री अस्तुज जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़िल, सुने गोंग जो जाहे सो रस न पावई, सुने मूड़ चित लाए चतरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रहै, ओ जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई, संबद सत्रह सहस पुण जाय, अर्ध सहस पुण तीन कह जाय, भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा, तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्र उपख्याने, त्रिय चरित्रे मंत्री भूप संवादे, चार सौ पांच चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त आप जू दोहरा, दास जान कर दास पार, कीजै कृपा अपार, आप हाथ दय राख मोहे, मन क्रम बचन विचार चौपाई, मैं नागरेसा प्रथम नाऊं, कृष्ण विष्ण कब हुन त्याऊं, कान सुने पहचान न तिन सौ, लिव लागी मोरी पग इन सौ, महाकाल रखबार हमारो, माह लो मैं किंकर थारो, अपना जानू करो रखबारो, बाह गह की लाज विचार, अपना जान मुझे प्रत परियै, चुन चुन सत्र हमारी मरियै, देग तेग जग में दो चलै, राखे आप मोहे और नंद लै, तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहे मैं दास तिहारा, जान अपना मुझे नवाज, आप करो हमरे सब काज,

0: गुण जान गुण ते
1: वाहिगुरु जी का खालसा
0: वाहिगुरु जी की
1: फतेह। इन्हां शब्दां दे नाल कीर्तन की समाप्ति है। सो हुण आप जी नूं गुरद्वारा साहब जी दे हैड ग्रंथी साहब कथावाचक पाज साहब भाई दर्शन सिंह जी कथा दे नाल जोड़नगे, गुरचरणां नाल जोड़नगे। सो उहनां दे कोलों पवित्र इतिहासक विचारां गुरबाणी दीआं विचारां ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

श्लोक। दर्शन प्यासी दिन से रात, चितबो अन दिन नीतो, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। दर्शन प्यासी दिन से रात, चितबो अन दिन नीतो, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीतो। छंत। सुन यार हमारे सज्जन,

रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबाई बो भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल

तीर्थ ना वैरचा पूजा करवास बहकार। जोगी सो त्यावन जेत्या लख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार। सतिया मन संतोख उपजे देने कै विचार, दे दे मंगे सहसा गुना सो।

तीर्थ भगत तुलव्य भव पे किया देही दुख दिया सब जी अपना किया न कहा साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पैरे अनस्कैरे मोन भी गुत्ता क्यों जागा गुरम सुता पग पे ताड़ा अपना किया कमाना आल मलकाई सिर साई पाई मूर्ख इंदा पद गवाई

कीर्तन कर दें। जते पासों में बेंत बोला हुई आप गुरु संगत बख्शन जोग हो आश्रित हैं आप गलत नज़रअंदाज करते हुए बख्शन की कृपालता करोगे जी। चल रही गुरबाणी की लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा सत्कार योग ज्ञान जी होर पासो आप जी सरवण करो जी। जिन्हें भी सत्संगी गुरबाणी गुरशब्द जुड़े हो प्यार सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहे

जब सको कोई मन परहरा तब ओ सेवक सेवा करा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाहियां। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दो तांगा गुरु हरि तेरा मन ही वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, मन मेरे सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विटहो, जिस दियां एहे वडियाइया। कह नानक गुण हो संत शबद धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शबद तित कर सुभागै, कर सुभागै शबद वाजे कला जित करता हरिया। पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटक मारिया, कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुखोआ तित करा न हद वाजे। आनंद सुन हो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बिसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया।